मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जावे। साथ सगत बोलो श्री टुरते हुए पिछली प्यारी अदा।

के पातशाह पिट हो रही है हुण इत्थों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पावन।

निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, हाय हाय, निर्धन को पाले, गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाए खालसा रहनी दा नाए खालसा अमली जीवन दा नाए खालसा गुणा दा नाए उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन किया है केवल बोल के लंघते हैं अज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लगा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लगा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारा चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सात संग आज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ये पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण सारे कृपा करो

पूर्ण परी परमात्म देव कातरे मुतलक माहे जबी शाह खूबा हस्ती मुकदस ला इंतहा कुल आलम दी सुल्तान सरवरे कायनात पतत पावन राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुशोभित बैठे हो तो सतगुरां ने बड़ी साडे ते कृपा कीती है कि सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी दे नाल रागां दा खजाना जो है बख्शिश कीता है। तो सतगुरु पातशाह जी ने मुख रागां तो अलावा मिश्रत राग सतगुरु ने दिते सानू। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दे बारे दासां नू हुक्म होया है कि कोशिश करो कि सारी बाणी सारा कीर्तन साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दा होवे। तो आओ आरंभता विच ही शास्त्रनामा सतगुरु पातशाह जी ने बहुत सुंदर पुस्तक कीती है। सतगुरु पातशाह जी ने विचित्र नाटक विच पातशाह जी ने शास्त्रां नू भगवती नू खग नू नमस्कार कीती है। सतगुरु पातशाह जी उच्चारण करदे ने विचित्र नाटक नमस्कार मोरंग तीरंग तुहंगं नमो खग अदंगं अपेंग अपंगं गदांग ग्रिष्टम नहो समो सहसियंग जिने तुलियंग वीर दियो ना दियो। ते सतगुरु पातशाह जी दे आओ शास्त्रनामा बड़े प्यार नाल श्रवण करो। ये राग जो आप जी श्रवण कर रहे हो कोशिश करांगे राग ये जिस तरह के आप जी सारे जानते हो पंथ प्रसिद्ध जथा सत्कार योग अति सत्कार योग भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी गुरबाग सिंह जी जो पंथ के रतन हैं पंथ के हीरे ने तो सतसंग जी वह भी बैठे ने तो अमरीत सिंह जी जख्मी साहब जी कीर्तन करके गए ने। तो आओ ये राग जो आप जी के सन्मुख रखन लगे हैं ये राग जिस तरह के औडव जाति छाडव जाति संपूर्ण जाति तीन जातियां दे राग मने जाते हैं पर चतस्वरी जाति चार सुर का राग है। इसका नाम भवानी राग है मां ते सा इसका वाती है बिलावल थाट का यह राग है। तो आओ बड़े प्यार गा पा नी ये वर्जित करके

ओखत है जल में फल में पल में कल के कर्म विचारे के निर्जुर्ण रूप हो फरीदा खालिक खलकू में।

कोई चंगा कर्म करके मैं बख्शा लो, जे पापां दी इक परी होवे इक पंड होवे ता कोई चंगा कम करके मैं बख्शा लवा। हे वाहेगुरु, एथे ता पापां दा कोई अंत ही नहीं, कितने कु हन जिस तरह समुंदर दियां लहरां दा कोई अंत नहीं, मेरे पापां दा भी कोई अंत नहीं। उचारण करो श्री जेता समुंदर सागर नीर भरिया, नीर तो भाव लहरां, कितना कु सागर है, पहला तो सागर का ही अंत नहीं, फिर उदिया लहरां दा भाई कौन अंत पाएगा। आप निरंकार होंदे होए, आप समर्थ पुरख होंदे होए, अनेक कला दे मालिक धन गुरु नानक पातशाह सानू अरदास करन दी जाच दस रहे हैं। भाई मनुष्य ने सेवा सिमरन पर उपकार करदिया होया भी गुरु अगे अकाल पुरख अगे ए अरदास करनी है, मते किसे चंगे कर्म दा तेरे मन विच हंकार आ जावे, ते ऐसा ना होवे कि तू चंगे कर्म करके अहंकार करे ते फिर ओ गल बन जावे मत थोड़ी शेव गवाईए, कीती हुई सेवा भी तेरी व्यर्थ चली जावे जे अहंकार करे। नहीं भाई, सब कुछ करदियां होया भी तू अकाल पुरख अगे ए अरदास करनी है, जो धन गुरु नानक पातशाह सानू अरदास करन दी जाच दस रहे हैं। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे, हे वाहेगुरु पर तू बख्शेंद भी ओडा ही वड्डा है, जितने वड्डे असी पापी हां तू तो कई गुणा वद बख्शेंद है। जे समुंदर दे विच पापां दे भरे होए दो चार बेड़े डुब भी जान तो तैनू की फर्क पैंदा है, समुंदर नूं की फर्क पैंदा है। आख्या तू समुंदर है दया दा, तू समुंदर है रहमतां दा, वड्डे तो वड्डा पापी भी तेरे चरणां विच आ जावे तू उसने कदे अवगुण नहीं चितारदा। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संदा तेरा बिरद है, जो भी कोई तेरे चरणां ते आके ए अरदास करदा है तू बख्शण विच देरी नहीं लाउंदा। ए अरदास गुरु सानू दस रहा है।

मैं आया था सा संसार में सेवा सिमरन परपकार करन ले, पर मैं ता कोई भला कर्म ना कर सकिया। मैं बना के रखनी सी नाम जपन वालियां दे नाल, मैं बना के रखनी सी तेरे नाल हे वाहिगुरु। मैं ता किसी नाल भी ना बना के रखी, मैं ता पदार्था नाल ही बना के रखी, इसलिए राख लियो हुन मैं तेरी शरणा। मंदे चंगे जेहो जे हां वाहिगुरु, तू सानू अपने चरणा विच रख लै, बख्श लै।

मैनू ए भोली गया कि ए शरीर त्यागना है, ए शरीर एक मिट्टी दी थेरी है। मैं इस नू अमर समझ के सब कुछ करता रहा, तैनू विसार के पदार्था वाल लगा रहा। अमर जान संची ए काया, पर ए मिथ्या काची गगरी। ए ता कच्ची गागर है, कच्चा घड़ा है, ए कितना कुछ साबित रहेगा। ए ता तनका लगेगा ते फौरन टूट जाएगा, उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। इसलिए मेरी भूल है,

आशा रूपी श्वान बैठे जिदे नाल तृष्णा ते आशा दियां दो कुतियां भी नाल हन क्योंकि मनुख सवेर तो शाम तक अपने धंधियां विच ज्यों ज्यों भौकण लगदा है सारा दिन बीत जांदा है उचारण करो श्री वाहिगुरु ए सवेर तो शुरू हुंदा है अपने कार विहारां विच खचत ते रात तक इस नूं तेरे नाम जपन दा कोई पता नहीं होंदा इसलिए धन गुरु नानक पातशाह कहंदे ने एक सुवान दोए सुवानी नाल पलके पौकै सदा बया आशा ते मनसा दियां कुतियां इस ते अंदर हन जो इस नूं तेरा नाम भुला देंदियां हन कदी ओ कम है कदी उधर तोर देंदियां हन कदी उधर तोर देंदियां हन ये साडी बिरती है उचारण करो श्री वाहेगुरु कूड़ शुरा मुठा मुरदार तानक रूप रहा करतार मैं पत की पंद ना करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा बिकराल ए वाहेगुरु साडा ए हाल है पर हुण किवें साडा पार उतारा होवे तेरा एक नाम तारे संसार एक नाम ही तेरा तार सकदा है ते ओ अरदास कीतिया भाई प्राप्त होंदा है जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे आखरी तुकां विच धन गुरु नानक पातशाह दस रहे हन के नाम तो बिना

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां

संसार भी किसी ऐसा वरते हैं, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होण करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश करते कि जे परस्पर काम आउण दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउणी है तू वाहगुरू नाल पा के देख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है, ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है, और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में, और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यों जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, यह हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन, आप करता पुरख हो, इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, यह हथ बज गए, यह हथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना होवे, आदर करना होवे, तां भी हथ बनने, लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने हैं इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आ सी, मत्था टेकने आ पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जा, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो, मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हां, अर्ज कर रहा हां, मैं केवल अरदास जुड़िया होवां। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबां ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहिंदा तो इहदे वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे, अपनी भगती नाल मेरे लिए एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा, प्रभु का होर कोई काम साथों थुड़िया नहीं गया, वाहिगुरू का कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा, ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तो करन तो पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा, पसीने पूंजदा, सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा है, लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा, वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी, कार्ज आया रासे नानक कहो गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे, जदों सतगुरु कार्ज करना आ जावे उसले कार्जा च शोभा हुंदी, ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा, ये गल वखरी है कि अरदास करने वाला बंदा कार्य की संपूर्णता तो बाद यह नहीं कहता मैं काम नबेड़ दिया, बल्कि वह तो यह कहता है।